सबै राम्रो सधैं हाम्रो रेडियो संखुवा सभा 95.5 मेगाहर्ज सधैं सुन्नु होला। कान्तिपुर डायरी।

0: बसंत को माँ या लुहावा चलदा, 16-17 को उमेर माँ जोबन को लहर चलदा, कसे कसे ले ती तो मीठो याद हरु ता दिए के होना है ना। हो ती याद हरु नहीं हुन कुसुमे रुमान छादायो
1: आयो
0: तकाने सामी
1: चिते।

0: हाय
1: के भो
0: आई
1: के आई
0: आई
1: के त के आई न के
2: जसलाई आई
1: भन्यो भने
2: पनि
1: भन न के आई
0: आई हेट यू

0: संचार जाने बाटो
1: डिजाइनर सुमन ठटाल 9865349444
0: र 0295901155
2: मोर स्टाइल मोर डिजाइन ठटाल टेलर्स।